इस बाज़ाहर आम से वाकये को असल में फिजिक्स और बसारत के बुनियादी उसूलों के साथ वाज़े किया जा सकता है। तो आइए मिलकर इस मज़हर पर ज़्यादा करीब से निगाह डालते हैं। सबसे पहले तो हमें रोशनी की हरकत के उसूल को जानना होगा। रोशनी एक माहौल से दूसरे माहौल में जाने पर अपनी सिमत को तब्दील कर लेती है। इस अमल को अमले इनआताफ कहा जाता है। रोशनी हवा से पानी में दाखिल होते वक्त सुस्त रफ्तार हो जाती है और सिमत को तब्दील कर लेती है। इस इनआताफ की वजह से पानी भरे गिलास में रखा हुआ कलम टूटा हुआ दिखाई देता है।

जब हम पानी भरे ग्लास में रखे कलम पर निगाह डालते हैं तो इसका पानी में डूबा हुआ हिस्सा पानी से बाहर वाले हिस्से के साथ एक ही सिमत में दिखाई नहीं देता। इसकी वजह रोशनी का हवा से पानी में दाखिले के वक्त अपने जाविये को तब्दील करना है। रोशनी के जाविये में तब्दीली के नतीजे में हमें कलम का पानी के नीचे का हिस्सा मुख्तलिफ नुक्ते से शुरू होता दिखाई देता है। हमारी आंखें इस अमले इनाताफ का इदराक करती हैं, लेकिन जब इन मालूमात को दिमाग तक पहुंचाती हैं तो दिमाग पानी के इनाताफ इंडेक्स के साथ इन मालूमात की तस्ही नहीं कर पाता। अगर इस वाक्य को ज़्यादा तकनीकी ज़ुबान में वाज़े करना ज़रूरी हो तो हम स्नेल कानून का जिक्र कर सकते हैं। स्नेल कानून जाविया इनाताफ और जाविया वकू की वजाहत करता है। ये कानून रोशनी की लहरों के एक माहौल से दूसरे माहौल में दाखिले के वक्त जाविये की तब्दीली को रियाजी की जुबान में बयान करता है। समिन इनताफ का मसर सिर्फ कलम के मामले में ही नहीं, रोजमर्रा जिंदगी के दीगर पहलुओं में भी हमारे सामने आता है। मसलन जब हम उथले या कम गहरे पानी में चल रहे हों तो हमारे पांव पानी की सतह से हकीकी मुसाफत के मुकाबले में ज्यादा करीब दिखाई देते हैं। इसका सबब भी रोशनी के जाविये की तब्दीली है। रोशनी पानी के माहौल से निकलकर हवा में दाखिले के वक्त जाविया तब्दील करती है और इस तब्दीली के बाइस पानी एक मुहद्दब अदसे की तरह हमारे पांव के मंजर को सतह आप से ज्यादा करीब दिखाना शुरू कर देता है। ये आम सा वाकया असल में बसरी साइंस और इंजीनियरिंग में नहायत अहम मुकाम रखता है। आंखें, कैमरे और माइक्रोस्कोप जैसे मुतद्दद ऑप्टिक आलात इनताफ के इसी उसूल पर बने हैं। इसके अलावा फितरी माहौल में बहुत से हैवानात इनताफ के उसूल से इस्तेफादा करके शिकार करते या खतरे से दूर भागते हैं। समिन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त।

में पार्टी का किरदार फर्ज़ हो दिया। प्रोग्राम शरीक शहरियों से खिताब करते हुए सदर एर्दोगन ने कहा, यह तहरीक एक चौथाई सदी कब कौम की उम्मीद के तौर पर जन्म लिया था और इस बात पर जोर दिया, यह सफर ताहाल खत्म नहीं हुआ। सुस्त रवि के मुतालबा को मुस्तरद करते हुए सदर एर्दोगन ने कहा, हुकूमत के पास अभी भी अहम काम बाकी हैं। तुर्किया वजारत कौमी दफा ने जुम्मे को पाकिस्तान को योम आज़ादी पर मुबारकबाद दी। दोनों मुल्क के माबैन करीबी ताल्लुक की तस्दीक की। वजारत ने तुर्किया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड सोशल पर एक पैगाम में लिखा है, हमारे दोस्त ब्रदर मुल्क पाकिस्तान को योम आज़ादी मुबारक। इसने मजीद कहा, तुर्किया और पाकिस्तान अपनी मुश्तरक तारीख भाईचारे के रिश्तों को बरकरार रखते हुए एक मजबूत मुस्तकबिल के लिए एक साथ खड़े रहेंगे। वजारत ने दोनों मुल्क के तवील मुद्दती ताल्लुकात को उजागर किया और करीबी तआवुन को बरकरार रखने के अज़्म पर जोर दिया। यमनी सरकारी फौज ने ताइस में हौसियों के ठिकानों पर हमला किया जिसमें दर्जनों अफराद हलाक हो गए। यमन के मरबी सूबे ताइस में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान होने वाली झड़पों में कम अज कम 27 हूसी जंगजू हलाक और 19 जख्मी हो गए। मकामी खबरसा एजेंसी के मुताबिक 2 दिसंबर को ये हलाकतें यमनी कौमी मुज़ाहमती फोर्सेज के हमलों के बाद हुई जिनकी क्यादत अलबार महाज पर तारिक सालिक कर रहे थे। सरकारी खबरसा इदारे सबा टीवी ने एक और खबर बताया, 10 दिन के अरसे में 57 सूसी जंगजों के आखिरी रसूमात अदा की गई। 6 अप्रैल 2022 में ऐलान करता तो वहां की जंगबंदी के बाद बड़े पैमाने पर लड़ाई में निस्बतन पुरसकून रहा था। हाली हफ्तों में यमन के कई सूबों में झड़पों में शिद्दत आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को मुस्तरद करते हुए कि वह अपना हुर्मुज़ को एक अमरीकी इलाका करार दे देंगे। ईरान के एक सीनियर सफारकार ने कहा, यह मकाम सिर्फ ईरान की मुल्कियत है और अमरीका से मुतालबा किया ईरान के खिलाफ जारी जंग में अपनी शिकस्त कबूल करे। नायब से खारजा काजम गरीब आबादी ने जुम्मे को अमरीकी सोशल मीडिया कंपनी एक्स पर लिखा, अपने हुर्मुज़ को किसी ट्वीट, किसी एयरक्राफ्ट कैरियर, किसी हुक्म या किसी इंतहाबी खुतबे के इंतहाबी तकरीर के दौरान कब्जे में नहीं लिया जा सकता। और मजीद कहा, ईरान न धमकियों से डरता है ना ही ताकत के मुजाहरे से इसे खौफजदा किया जा सकता है। गरीब आबादी ने लिखा, हुर्मुज़ ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा। यह मकाम सिर्फ और सिर्फ ईरान के हुक्म पर बंद और खुलेगा। अब जब तक आप अपनी शिकस्त की हकीकत कबूल नहीं करते, अपने ख्याली तसव्वुरात को तर्क नहीं करते, ईरान इस पर नाकाबंदी जारी रखेगा। जुम्मे को देर के एक बयान में ट्रंप ने कहा, अमरीकी नेवी अपने हुर्मुज़ का मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर रही है। उन्होंने कहा, ईरान को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने के बाद मैं बहुत जल्द हुर्मुज़ के अमरीकी इलाका होने का ऐलान करूंगा। ईरानी हुकाम ने बारहा कहा है कि जब तक अमरीका वहां दाखला जारी रखेगा, पहली मुआसरा बरकरार रखेगा और तेहरान वाशिंगटन के दरमियान जून के फ्रेमवर्क महदी की शरात पूरी नहीं करेगा, उसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, अमरीका के पास आप महरूम का मुकम्मल कंट्रोल है, इस कंट्रोल को बरकरार रखने के अहल है। सरकारी खबरसा जनसुना ने हफ्ते रिपोर्ट किया कि सूडानी खुद मुख्तार काउंसिल के सदर अब्दुल फताह अल बुरहान ने कहा, सूडानी मुसलह फौज अभी पैरामिलिट्री रैपिड फोर्सेस को शिकस्त देने के अज़्म पर कायम है, मगर उन्होंने सही मानों अमन इकदाम के उनके दरवाजे खुले होने पर भी जोर दिया। सरकारी एजेंसी सुना के मुताबिक सूडानी मुसलह फौज की 72वीं सालगिरह के मौके पर एक खिताब में अल बुरहान ने जुम्मे को कहा, फौज के आरएसएफ के खिलाफ लड़ने शिकस्त देने का अज़्म ये मफहूम रखता कि हम किसी भी हकीकी अमन पहल से नजरें हटा लेंगे। हमारी कोशिशें बागी के इब्तदाई महीनों से इसी सम जारी रहे हैं, लेकिन हम नामुकम्मल अमन या ऐसा अमन कबूल नहीं करेंगे जो मुजरमीन और कातलों आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमद अंदकलो की मलेशिया उसके हमले को दोबारा इकतदार में शराकत दे दे। बुरहान ने बताया, हमारी पोजिशन मई 2023 से वाजह है, उनका रास्ता मलेशिया के हथियार डालने, मखसूस इलाके में जमा होने, शहरों के अपने इलाके में वापस जाने, मामूल की जिंदगी, खिदमात, सिक्योरिटी, हिफाजत, निगरानी की वापसी से होता है। उन्होंने मजीद कहा, इसके बाद इनकी सूरतेहाल पर गौर किया जा सकता है। मशरक इंडोनेशिया में जजीरा फ्लोरस के साहल पर 7.7 की शिद्दत का जलजला आया जिसके नतीजे में हजारों लोगों में खौफ और खराश फैल गया। हुकाम की जान से सुनामी वार्निंग जारी किए जाने के बाद कम अज कम 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई। हफ्ते के जल्जले के मरकज का करीब तरीन जिला नगी क्यों के रहायशी जब समंदर
پیچھے ہٹا تو بلندی کی طرف دوڑ گیا۔ یہ ایک ممکنہ آنے والے سونامی کی علامت تصور کیا گیا۔ بعد ازاں وارننگ ختم کر دی گئی۔ امریکہ اور انڈونیشیا کے حکام کے مطابق کم گہرائی والے زلزلے کا مرکز جزیرے کے شمالی ساحل سے باہر تھا، اور جو ساحلی شہر اندے سے تقریباً 68 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ ابتدائی جھٹکے کے بعد اسی علاقے میں بڑے پیمانے پر بعد زلزلے بھی آئے، جن میں ایک کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ 31

सर अस्पताल के कस्टमर सर्विस एहलकार माओ मेरे की रहायशी लोकास दोतार ने एफपी को बताया, अचानक हर चीज हिलनी शुरू हो गई, मैं बहुत घबरा गया। उनका मरीज भी अस्पताल से भागने लगे, झटका बहुत बड़ा था। मैंने कुछ दीवारों पर दरारें पड़ती देखी, लेकिन क्योंकि रहायशी युहान्स बाबू ने जब कहा कि वो मार्केट में था जब जमीन हिलनी शुरू हुई। इंडोनेशिया के मौसमियात माहौलियात तब्दीली जो फिजिक इदारे BMKG ने जल्जे के बाद सुनामी लहरों के इम्कान की वारंट जारी की और लोगों पर जोर दिया बुलंद मकाम की तरफ चले जाए। 9 मीटर से 3 मीटर तक लहरों की इंतबाह जारी किया गया था, लेकिन बाद अजां ये वार्निंग खत्म कर दी गई। ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। जुम्मे की देर शब जनूबी अस्पानवी शहर गरनाता में 5 की शिद्दत का सिलसिला रिकॉर्ड किया गया। इलाके की हुकूमत ने बताया घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, मगर किसी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। इस सिलसिला अलहमदीन के मेट्रोपोलिटन इलाके में आया। अस्पान टेलीविजन चैनल TVE ने सड़कों पर मलबा बिखरने, इस मकबूल सियाहती शहर में कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचने के मनाजर नष्ट किए। अंदलुस के हंगामी खदमाती इदारे ने नुकसान पहुंचने वाली इमारतों से मुतद अफराद को निकाला। अंदर से सूबाई हुकूमत के नायब ने हफ्ते को एक्सपर पैगामे का हुकाम ने हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया है। उनका खराब करनाता में अपने जल्जा महसूस किया है, अब खरीय से हैं, उनके घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो पुरसकून रहे, गैर जरूरी तौर पर इमारतों में दाखिल या बाहर न निकले। कहा गया कि सड़कों पर इमारतों के सामने हिस्सों से टाफ्टी किनारों बालकनियों दीवारों दीगर ऐसे हिस्सों से दूर रहें जिनके गिरने का इम्कान हो सकता है। एक तरफ यूक्रेन रूस के दरमियान होने वाकया, दूसरी तरफ ईरान इसराइल अमरीका के ताने बाने से शुरू होकर पूरे खलीज में फैलने का इहतमाल रखने वाली जंगें। दुनिया 50 साल से ज्यादा अरसे के बाद पहली बार इस कदर शदीद तवील वसी रकबे को मुतासर करने वाले बहरान का सामना कर रही है। बेशक ये सूरत हाल उन ममालक के लिए खास तौर पर तकलीफ दे है जो दूसरी आलमी जंग के बाद कायम होने वाले नए निजाम को दायमी समझते रहे, जो लोग जानते कि क्या करना है, उनकी फहरिस्त बनाई जाए तो यूरोप की मालक सर फहरिस्त होंगे। ये कोई पोशीदा बात नहीं, बरअज़म के मुख्तदार हुकूमतों में दिखाई देने वाले इशारे ये बताते हैं इनमें से तकरीबन कोई भी हकीकी जंग के लिए तैयार नहीं। खत्म होने वाले मिसाइल जखायर को दोबारा पूरा करना आसान नहीं होता। बड़ी तस्वीर को दुरुस्त तौर पर समझने मालक ये जानते हैं दुनिया पहले जैसी नहीं रही, जंग के माहौल का जल्द खत्म होना बईद कयास है, यानी हकीकी अरबों डॉलर की मौतों बढ़ने वाले नए इतिहादों के एक साथ हरकत करने की नीयत के पीछे है। यह बात काबिल गौर है, अमरीका जैसे बड़े पैदावार पैदा करनेकानों अपनी फहरिस्त लापताई होने के तासर से दुनिया को ललकारने वाला रूस आज कहाँ खड़ा है। दोनों ताकतों की इन्वेंट्री में मौजूद मिसाइल, गोला बारूद, जदीद निजाम तनकीती सतह तक पहुंच चुके हैं, ये कोई सीधा राज नहीं। बहुत अरसे से बड़ी जंग की तैयारी मसरूफ ईरान के पास मौजूद जदीद मिसाइल कितनी तेज से खत्म हुए, दुनिया के गोशे गोशे से इमदाद पाने वाले यूक्रेन को भी किन सख्त मराहल से गुजरना पड़ा, ये सब अया है। फिलहाल दुनिया भर में मिसाइल के जखायर का मसला मौजूद है, तो कोकी जारी, ये मसला बढ़ता जाएगा। तुर्किया मिसाइल पैदावार में खला पुर करने वाला मुल्क बन सकता है, इसी नुकता नजर के तहत तुर्किया के मुआवजे में आना हैरान कुन न होगा। अंकरा तवील मुद्दत से अपने मिसाइल को तैयार करने की कोशिशों में मसरूफ रहा है। मकामी मिसाइल तैयार करने के लिए मेहनत करने वाले फर्मों ने दर हकीकत तवील नहायत मुश्किल रास्ते तय किए हैं। काफी पैसा, बहुत सा वक्त, संजीदा चैलेंजेस के बाद तुर्क फर्मों ने अपने मिसाइल मनसूबों को अमली शक्ल देने में कामयाबी हासिल की है। ईरानी मुजाहरीन गजा में नस्ल कुशी पर इसराइल क्रूज के खिलाफ मुजाहरा किया। फलस्तीनी हामी कारकुनान यूनानी सेफर्स यूनियन के अरकान ने पियर्स पोर्ट के सामने इसराइल क्रूज क्राउन आयरिस की आमद के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस की भारी नफरी के पीछे मुजाहरीन ने फलस्तीनी परचम लहराए, बैनर्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था मुसाफरों को हम नापसंदीदा करार देते हैं। मुंतजमीन गजा में इसराइल की नस्ल कशी जंग को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया। यूनान से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुक मुनकता करने का मुतालबा भी किया। यूनियन रहनुमाओं ने कहा फतह हासिल करने तक फलस्तीनी अवाम की हमायत जारी रखेंगे। सामने का सूरी ऐलान नोट फरमा लीजिए, हमारी नशिया जो पहले 3 तुर्कसैट 3A सैटेलाइट के जीनश होती थी, अब तुर्कसैट 4A सैटेलाइट पर पेश की जाएंगी। हमारी नशिया से इस्तेफादा करने के लिए आपको अपने सैटेलाइट रिसीवर्स पर फ्रीक्वेंसी सेटिंग्स को अपडेट करने की जरूरत है। हमारी नई फ्रीक्वेंसी की मालूम दर्जा जैल है। सैटेलाइट तुर्कसैट 4A फ्रीक्वेंसी 12,092 मेगाहर्ट्ज़, पोलराइजेशन वर्टिकल सिंबल रेट 2,500 FEC,
56 अजराह कर्म नोट फरमा लीजिए। इसके साथ इस दाए तुर्किया से खबरें खत्म हुई। हम नाम सदाए तुर्किया की उर्दू सर्विस से मुखातिब हैं, तो आइए अब जेलान तीन तुर्कसैट 3A सैटेलाइट के जीनश होती थी, अब तुर्कसैट 4A सैटेलाइट पर पेश की जाएंगी। इमरजेंसी से इस्तेफादा करने के लिए आपको अपने सैटेलाइट रिसीवर्स पर फ्रीक्वेंसी सेटिंग्स को अपडेट करने की जरूरत है। हमारी नई फ्रीक्वेंसी की मालूम दर्जा जैल है। सैटेलाइट तुर्कसैट 4A फ्रीक्वेंसी 12,092 मेगाहर्ट्ज़, पोलराइजेशन वर्टिकल सिंबल रेट 2,500 FEC 56 अजराह कर्म नोट फरमा लीजिए। इसके साथ इस दाए तुर्किया से खबरें खत्म हुई। सामिन हम सदाए तुर्किया की उर्दू सर्विस से मुखातिब हैं, तो आइए अब जेलान एर्थम की आवाज में एक तुर्की नगमा सुनते हैं। गाने के बोल हैं दिद गुलू सेवदिल।

ज़ाफ़िर इन दरख्तों के फल खा सकता है, लेकिन ना शाख तोड़े, ना दरख्त को नुकसान पहुंचाए और ना ही फल अपने साथ ज़खीरा करके ले जाए। क्या यह सखावत सिर्फ इंसानों तक महदूद थी? हरगिज़ नहीं। बज़्मे आलम वालदा सुल्तान के वक़फ़नामे में हिदायत की गई थी कि बागात के कुछ फल दरख्तों पर ही रहने दिए जाएं, ताकि आसमान के परिंदे, जिनका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है, वो भी इनसे अपना हिस्सा हासिल कर सकें। यह तसव्वुर फितरत को सिर्फ इंसान के नुक्ता नज़र से नहीं देखता, बल्कि पूरे माहौलियाती निज़ाम को रहमत व शफ़क़त के एक वसी दायरे का हिस्सा समझता है। बाज़ औक़ाफ़ में ये शर्त भी रखी गई थी कि हर बहानों और अवामी मकामात पर खुशबूदार फूल लगाए जाएं, ताकि शहर की खूबसूरती और अवाम की रूहानी आसूदगी दोनों को फ़रोग मिले। तो फिर ये कदीम सब्स वक्फ की रूह आज कहाँ जिंदा है? आज इस वर्षे की अलमबरदारी टीमा फाउंडेशन कर रही है। दरहकीकत टीमा फाउंडेशन इस दौरे जदीद में सुल्तान मोहम्मद फातेह के तसव्वुर तहफ्फुज़ फितरत का एक शहरी और समाजी अक्स है। इस फाउंडेशन की ज़मीन को कटाओ और तबाही से बचाने की जद्दोजहद दरअसल ज़मीन की इज्जत और ईमानत की हिफाजत की जद्दोजहद है। आज के जदीद सब्ज औकाफ सिर्फ दरख्त नहीं लगाते, बल्कि अपने असलाफ की तरह फितरत के हकूक़ का दिफा भी करते हैं। वो जंगलात को एक इज्तमाई अमानत और अवामी असासा बरकरार रखने के लिए कानूनी और समाजी तहफ़ फराहम करते हैं। सदियों पहले की तरह आज भी एक पौधा लगाना दरअसल मुस्तकबिल को आने वाली नस्लों के लिए वक्फ करना है। वक्फ़ की रूह ने सख्त तरीन सर्दियों में भी फितरत को बेसहारा नहीं छोड़ा। ज़िला बुरसा और ज़िला अर्ज़रूम जैसे शदीद सर्द इलाकों के जंगलाती औकाफ में बाकायदा ये शर्त रखी गई थी कि बर्फबारी के दौरान खुराक से महरूम हो जाने वाले जंगली जानवरों के लिए दरख्तों की शाखों पर गोश्त और जानवरों की अंतड़ियाँ, ओचड़ी वगैरह रख दी जाएं। सब्ज़ाखोर जानवरों के लिए जंगल के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर चारा भी रखा जाए। इसे सिर्फ खैरात नहीं बल्कि एक अवामी जिम्मेदारी भी समझा जाता था। उस्मानी वक्फ कानून ने दरख्त को वक्फ की जायदाद का दर्जा देकर महफूज और नाकाबले दस्तंदाजी करार देकर इसे बेजा कटाई से महफूज कर दिया। वक्फ के दरख्तों को नुकसान पहुंचाना तकरीबन इतना ही संगीन जुर्म समझा जाता था जितना मस्जिद जैसे मुकद्दस वक्फी अमलाक को नुकसान पहुंचाना। इसी वजह से माहौल सब्ज़े से भरा हुआ था। जैसा कि यूरोपी सयाहों ने अपनी यादाश्तों में लिखा है कि अनातोलिया के शहर दूर से ऐसे दिखाई देते थे कि घरों की झलक भी मुश्किल से नजर आती। इमारतें गोया दरख्तों की आगोश में छुपी हुई होती और पूरे शहर एक वसी बाग का मंजर पेश करते थे। क्योंकि इस तहजीब में दरख्त लगाना सदका जारिया समझा जाता था, ऐसा नेकमल जिसका अजर दरख्त लगाने वाले की वफात के बाद भी जारी रहता था। इसके साय में बैठने वाला हर मुसाफिर और इसके फल खाने वाला हर परिंदा इसके लिए सवाब का बायस बनता रहता था। आज जब हम मौजूदा दौर के कंक्रीट के जंगल में सांस लेने के लिए एक साया तलाश कर रहे होते हैं, तो दरअसल वक्फ की इसी कदीम रवायत की सरसब्ज पनाहगाह को ढूंढ रहे होते हैं। दरख्त को भाई समझने, जंगल को मुकद्दस इमानत जानने और ज़मीन को रहमत और शफकत के साथ संवारने वाली वो अजीम मीरास आज भी एक नन्हे पौधे के सबर में हमारी मुंतसिर है। माजी के शजरदारों से लेकर आज के रजाकारान माहौलियात तक फैला हुआ यह सिलसिला दुनिया को दोबारा सरसब्ज बनाने की उम्मीद का सबसे मजबूत पुल है। याद रखिए, एक शाख की हिफाजत दरअसल एक तहजीब की जड़ों की हिफाजत है। वक्फ हमेशा से सरसब्जी का अब्दी और कानूनी महाफज रहा है। रहमत व शफकत के इस सफर में रुकना मना है। अगली सोबत में हम रहमत की शान सलातीन और वालदा सुल्तानों के दरमियान औकाफ की खिदमत में एक दूसरे पर सबकत ले जाने के असीम जज्बे के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि उस दौर में सखावत और खिदमत खल्क अपनी बुलंद तरीन सूरत में किस तरह जलवागर हुई। तब तक फितरत और इंसानी जमीर का हाथ थामे रखिए और याद रखिए कि जब एक हाथ आगे बढ़ता है तो एक जिंदगी बदल जाती है। ये वो मुकाम है जहाँ एक कहानी मुकम्मल हो जाती है। आइंदा हफ्ते प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानी में दोबारा मुलाकात की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देने वाले हाथ की कहानी।